गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो पर आरजे अंकिता के साथ, और मैं हाजिर हूँ कार्यक्रम लेके नॉनस्टॉप गपशप। सुबह के 10:03 हो चुके हैं दोस्तों, और मैं रहने वाला हूँ हमारे इस कार्यक्रम में 11 बजे तक आपके साथ। और नॉनस्टॉप गपशप का मतलब ही है दोस्तों कि हम कर और आप करेंगे एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें, ढेर सारी गपशप। और गपशप करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, बस करना है हमारा फोन नंबर डायल, और हमारा फोन नंबर है 2231314। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि नोट मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी बताने वाला हूं आपको टॉपिक कि हम किस टॉपिक पे करेंगे बात एक दूसरे से। दोस्तों ऐसे तो मैं कई सारे टॉपिक लाता हूं, कभी फिल्मी टॉपिक, कभी नॉन फिल्मी टॉपिक, तो मैं सोचा आज क्यों ना फिल्मी टॉपिक ही लिया जाए। तो दोस्तों फिल्मी टॉपिक इस प्रकार है कि हम तो हमेशा फिल्म देखते हैं।

है, चाहे वो हॉरर हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो रोमांस हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि बच्चों के लिए या बच्चों पर आधारित भी कई फिल्में होती हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपने लाइफ में जरूर देखे ही होंगे, और उससे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ तो हम सीखे ही होंगे, और हमें वो फिल्म काफी पसंद आई होगी और मन किया होगा कि हम वो फिल्म बार बार देखें। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों से यही बात करने वाला हूं कि ऐसी कोई बच्चों वाली फिल्म हो, या ऐसी कोई फिल्म आधारित हो जो बच्चों पर बनी हो, या फिर बच्चे एक्टर एक्ट्रेस हो वहां पर काफी अच्छी एक्टिंग की हो, आपको ऐसी कोई फिल्म जो पसंद आई हो, आइए हमसे बात करिए और बताइए कि ऐसी कौन सी फिल्म है जहां आप कुछ सीखे उन बच्चों वाली फिल्म से या आपको काफी पसंद आई। और फोन नंबर तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बताता हूं कि हमारा फोन नंबर है 2213-1341 पर यहां डायल करिए और करेंगे हम एक दूसरे से बातें। और जब तक आप करते हैं डायल, सुनते हैं पहला ट्रैक आप लोगों के लिए।

0: फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, ऐसा आप सुन रहे थे मीका सिंह और आशीष कौर की आवाज में। ये गीत वाइट नॉइज़ कलेक्टिव का संगीत और वाइव के टेबल, और हमारे साथ एक दोस्त आ चुके हैं लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: मैं अरूप बोल रहा हूँ।
0: अरूप जी वेलकम टू माय शो, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं आज के टॉपिक के बारे में।
1: मैं कहना चाहता हूँ मैंने टीवी पर एक फिल्म देखा,
0: अच्छा,
1: उसका नाम है कुवारा बाप।
0: वाह,
1: हम सब लोग जानते हैं महमूद हटाना पड़ता है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: वो महमूद मैंने रोने दिया मेरा को।
0: हाँ हाँ,
1: सब लोगों को जो भी वो फिल्म देखा
0: जी
1: सबको रोना दिया। और उसमें एक गाना था आरी आजा निंदी आले से हो कहीं, वो किशोर कुमार का गाना है, शायद राजेश रोशन का म्यूजिक है।
0: अच्छा,
1: वो बहुत बढ़िया गाना है, ये गाना हम आप पेश करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपके लिए वो गाना प्ले करने का। और थैंक यू अरूप जी आने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे और बताने के लिए कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी बच्चों वाली। और दोस्तों, भारत में क्यों थम गया बाल फिल्मों का कारवां? 2000 का दशक भारतीय सिनेमा में बच्चों की फिल्मों के लिए एक स्वर्ण युग की तरह था। तारे जमीन पर, तारा रमपम, भूतनाथ और चिल्लर पार्टी जैसी फिल्मों ने यह साबित किया था कि बच्चे एक ऐसा गंभीर दर्शक वर्ग है जिनके लिए सरल और दिल को छू लेने वाली कहानियां बनाई चाहिए। लेकिन आज ये जॉनर पूरी तरह से एक शून्य में खो चुका है। इसके पीछे कई सामाजिक, व्यावहारिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार है।

0: तारे जमीन पर से दोस्तों शान और आमिर खान की आवाज में सुन रहे थे ट्रैक शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन प्रसून जोशी के बोल। और दोस्तों जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उन्हें बता दूं कि दोस्तों आज मैं कर रहा हूं बात उस टॉपिक पर यानी बच्चों की फिल्मों पर। यानी आपको कोई ऐसी फिल्म पसंद आई हो जहां पर जो फिल्म बच्चों के लिए बनी हो आप उस फिल्म से कुछ सीखे हो या फिर उस फिल्म में बच्चों पर आधारित हो या फिल्म पर जो हो बच्चे काफ़ी शानदार एक्टिंग की हो ऐसी कोई भी फिल्म आपके जहन में हो आपने देखी हो या फिर आपको याद हो तो आइए हमसे शेयर करिए। हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341 पर, यहाँ पर करिए शेयर, करूँगा एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें। और एक दोस्त आ चुके हैं करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो दादा
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आज हमारे साथ?
1: नमस्कार दादा, मैं शौविक शकर बोल रहा हूँ कस्बा से।
0: हाँ शौविक बताओ क्या कहना चाहते हो आज?
1: पहले तो जो फिल्म का जो गाना चलाया था सारे जमीन पर,
0: हाँ।
1: फिल्म बहुत अच्छा लगा था।
0: अच्छा
1: और भी कुछ फिल्म है, मैं बोलूंगा भूतनाथ फिल्म भी बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पर अमिताभ बच्चन का जो रोल जो था बहुत अच्छा लगा था, वो बच्चे का जो रोल किया था वो भी एक भूत के साथ जो एक इमोशन जो हो जाता है अच्छा सा दोस्त भी हो जाता है भूत दिखाया था
0: बिल्कुल।
1: और एक फिल्म के बारे में मैं बोलूंगा वो है इकबाल।
0: हाँ
1: इकबाल बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वहाँ पर जो दिखाया था दादा वो है हम लोग बांग्ला में जो बोलता है ना धैर्य शक्ति, वहाँ पर दिखाया था जो एक अच्छा सा एक बोलर कितना अच्छा सा जो एक टॉप में जा सकता है, आपका जो लक्ष्य जो है ना एकदम स्थिर रहना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ना भटकना चाहिए, एकदम स्थिर रहना चाहिए। वहाँ पर इकबाल में वही फिल्म दिखाया था
0: बिल्कुल, उस फिल्म से हमें सीखने मिले कि हमें मेहनत करती रहनी चाहिए और पेशेंस भी रखना चाहिए
1: एकदम दादा। वो सियास तलपरे ने वो अभिनय किया था, अच्छा सा मुझको बहुत अच्छा सा लगा इकबाल फिल्म। जो चाइल्डहुड जो फिल्म है बच्चे को जो फिल्म है ना,
0: हाँ।
1: हम बड़ों को भी एक मैसेज दे दे दे जाते हैं दादा।
0: बिल्कुल सही बोल रहे हो,
1: पढ़ता है दादा इस फिल्म से दादा, हाँ। नहीं बोलूं।
0: थैंक यू शौविक, थैंक यू आने के लिए लाइन पर बताने के लिए। और दोस्तों मैं भी कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ कि बचपन और बचकानेपन के बीच की गलतफहमी क्या है। अनुभवी फिल्म निर्माता अमोल गुप्ते के अनुसार फिल्म उद्योग में बच्चों की कहानियों को अक्सर बचपन यानी चाइल्डहुड की बजाय बचकानेपन यानी चाइल्डिशनेस के साथ मिला दिया जाता है। व्यस्क निर्माता कहानियों को इतना सतही और बचकाना बना देते हैं कि मानो बच्चों में समझ ही ना हो। दीपा भाटिया कहती है कि मनोरंजन के इस पूरी चक्र में बच्चों की अपनी कोई आवाज नहीं होती। पहले थिएटर मनोरंजन का मुख्य जरिया थे लेकिन अब सोशल मीडिया और व्यक्तिगत स्क्रीन जैसे मोबाइल या टैबलेट के अत्यधिक पहुंच के कारण बच्चों में थिएटर जाकर कहानियां देखने का उत्साह और इच्छा दोनों ही कम हो गए हैं।

0: हंसते हैं खुश हो तो रोते हैं, ये मुसाफिर मोहब्बत के बड़े अजीब होते हैं।
1: फिल्म गुस्ताख इश्क से दोस्तों शिल्पा राव और पापोन की आवाज में आप सुन रहे थे। ये गीत विशाल भरद्वाज का संगीत, गुलजार के बोल। एक दोस्त आ चुके हैं फोन लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो
2: हेलो, मेरा नाम है शुभजीत, दिलगिर से बात कर रहा हूँ।
1: शुभजीत वेलकम टू माय शो, बताओ क्या कहना चाहते हो आज के टॉपिक के बारे में।
2: मेरा एक फेवरेट फिल्म है जो काफी सारे लोग देख चुके हैं, किलर पार्टी।
1: बिल्कुल।
2: तो इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि हम जो बड़े हैं वो काफी सारा चीज नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं, इसमें काफी डिप्लोमेटिक होते हैं।
1: हाँ।
2: लेकिन वो जो सब बच्चे जब एक हमारा कुत्ते के लिए जितने भी डॉग्स हैं तो हम लोग देखभाल नहीं करते हैं।
1: हाँ।
2: काफी लोग और काफी सारा केसेस भी हम देखते हैं आसपास रियलिटी में जो हम स्टेट ऑफ के साथ करते हैं, और काफी सारा आवाज उठाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते हैं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि उन लोग का मासूमियत और जो बेफिक्र जो एक मेंटलिटी है बच्चों में जो बड़े बड़ों में नहीं है वो मुझे काफी सारा अच्छा लगा। और जो आवाज उठाना और जानवरों के प्रति संवेदनशील होना वो काफी मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह से वो नेता जो पॉलिटिकल लीडर जो थे वो जिस तरह से अपने टीम बना के जो ट्रेड ऑफ को हटाने का मरवाने का जो प्रयास कर रहे थे
1: बिल्कुल
2: उसके विरुद्ध में जो बच्चों ने आवाज उठाया।
1: हाँ।
2: वो हम शायद बड़े
1: कभी ना कर पाए। हाँ,
2: हाँ कभी ना कर पाए। और हम बहुत कुछ सोचते हैं
1: बिल्कुल
2: करने से पहले।
1: हाँ।
2: शायद कभी कभी होते हैं कि ये चलो अच्छा है कि सोचना चाहिए, लेकिन बच्चों की जो मासूमियत बच्चों की जो प्योरिटी ऑफ माइंड है वो तो हम बड़ों में नहीं होते हैं। और इसका भी रीजन है, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत टच किया वो चीज। और एक चीज मुझे अच्छा लगा कि जब ये जो बच्चे हैं वो जो एक ऑर्फन बच्चों बच्चे का और उसके कुत्ते का जो शायद बिडू नाम था उसका, तो उसके साथ जो दोस्ती किए उसमें जो ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है दोस्ती
1: नहीं।
2: में वो काफी अच्छा लगा। और जो जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट किया था वो बच्चे अपने हिसाब से, क्योंकि वायलेंस तो बड़ों में ही है, बच्चे में तो कुछ है ही नहीं
1: बिल्कुल,
2: वो तो सोचते भी जानते भी नहीं है वो है क्या। तो ये जो अधिकार जो प्रोटेस्ट जो संवेदनशीलता ये काफी मैंने सराहनीय है, मतलब इतना अच्छा लगा।
1: सही बोल रहे हो।
2: और मुझे लगता है कि चिल्लर पार्टी सबको देखना भी चाहिए,
1: देखना चाहिए।
2: नहीं दिखे हैं और जबकि हम लोग के आसपास में स्टेट ऑफ के लिए इतना कुछ किया जा रहा है।
1: हाँ।
2: और सबको चाहिए, इंसान को चाहिए कि जो जानवर हम कुछ बोल नहीं सकते अपना दर्द नहीं शेयर कर सकते।
1: हाँ।
2: हम उसके तरफ थोड़ा सा संवेदनशील होना
1: बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू आने के लिए।
2: थैंक।
1: और बात हो रही है चिल्लर पार्टी की, और चिल्लर पार्टी का ये ट्रैक ना हो तो कैसे चलेगा।

फिल्म चिल्लर पार्टी से दोस्तों अमित त्रिवेदी और जय श्री त्रिवेदी लेकर आए थे। ये ट्रैक अमित त्रिवेदी का, कंपोजिशन नितेश तिवारी और अमित त्रिवेदी के थे बोल। बाल कलाकारों के साथ काम करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। निर्देशक मनीष रैनी के अनुसार सेट पर निर्देशक को एक माता पिता की भूमिका निभानी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की छुट्टियां और उनके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे व्यस्कों की तरह लंबे समय तक एक जैसा ऊर्जे में अभिनय नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा के कारण सेट पर नकली धुएं जैसे स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित होता है। वितरण के स्तर पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया CFSI जैसी संस्थाओं के पास भी इन फिल्मों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए कोई ठोस माध्यम या चैनल नहीं था, जिससे फिल्मों को स्कूल तक पहुंचाना एक बेहद कठिन काम बन जाता है।

फिल्म पति पत्नी और वो दो से दोस्तों आप सुन रहे थे बादशाह कृष मंडल, किशोर मंडल और इप्सिता की आवाज में। ट्रैक कंपोजिशन बादशाह और हितेन की। 10:30 AM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। आरजे अंकित है, रहूंगा 11 बजे तक आपके साथ। और आज दोस्तों नॉनस्टॉप गपशप में मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं कि ऐसी कोई बच्चों वाली फिल्म जो बच्चों पर बनी हो या बच्चों पर आधारित हो या फिर ऐसी कोई फिल्म जहां पर आपको बच्चे की एक्टिंग शानदार लगी, ऐसी कोई फिल्म आपको पसंद हो या आपके जहन में आपको याद हो, आपने देखी हो, आइए हमसे शेयर करिए उस फिल्मों के बारे में, उस फिल्म के बारे में आपको क्या अच्छा लगा ये हमें बताइए। और हमारा फोन नंबर है 2221314 पर, नंबर एक बार फिर से ताकि आप नोट कर सके, 2221314 पर आइए, डायल करिए और हमसे शेयर करिए। और सिनेमा हॉल की दोस्तों बढ़ती लागत और माता पिता की पैसा वसूल मानसिकता, महामारी के बाद से लोगों की सिनेमा देखने की आदतें बदल चुकी है। अब लोग घरों के आराम में फिल्म देखना पसंद करते हैं। सिनेमा घरों में महंगे टिकट और मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर बिकने वाले स्नैक्स ने थिएटर जाने के अनुभव को एक महंगा जुआ बना दिया। इसके अलावा भारतीय दर्शकों के थिएटर के साथ एक लेन देन का रिश्ता बन चुका है। माता पिता अक्सर बच्चों की फिल्मों के बजाय एवेंजर्स जैसी भव्य फिल्में या ऐसी फिल्मों पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं जिन्हें वे पैसा वसूल मानते हैं, भले ही उनमें कुछ आपत्तिजनक सामग्री ही क्यों ना हो।

फिल्म गुंडे से दोस्तों आप सुन रहे थे जावेद अली और शादा फरीदी की आवाज में एक धमाकेदार ट्रैक सोहाली सेन का कंपोजिशन इरशाद कामिल के बोल। जोखिम ना लेने वाला बॉलीवुड और कमजोर मार्केटिंग। फिल्म वितरक विशेषज्ञ चौहान के अनुसार बॉलीवुड बेहद जोखिम विमुख यानी रिस्क एवर्स है। यहाँ केवल उन्हीं जॉनर पर काम होता है जो पहले से हिट हो, जैसे हॉरर, कॉमेडी, एक्शन या रोमांस। जब तक बच्चों के जॉनर में कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म मिसाल कायम नहीं करती, तब तक निर्माता इनमें निवेश करने से डरते हैं। आज जो भी बाल फिल्में बनती हैं वे या तो बेहद कम बजट की होती हैं या उनकी कहानी कमजोर होती है। इसके अलावा फिल्म निर्माता खुद अपनी फिल्मों को लेकर आश्वस्त नहीं होते, जिससे उनकी मार्केटिंग आधी अधूरी होती है।

फिल्म खूबसूरत से दोस्तों सुनिधि चौहान और रेशमी सतीश लेकर आए थे ये गीत, स्नेहा खनवलकर का कंपोजिशन, लिरिसिस्ट इकराम राजस्थानी। दोस्तों हम अक्सर बात करते हैं फिल्मों के बारे में, चाहे वो हॉरर हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो एक्शन हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं बच्चों की फिल्मों के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन हमने अक्सर बच्चों की फिल्में भी देखी है और उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो बस मैं आप लोगों से वही जानना चाहता हूँ कि आपकी ऐसी कोई पसंदीदा बच्चों वाली फिल्म हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, जहाँ पर बच्चे की एक्टिंग काफ़ी शानदार लगी हो, या फिर आप कुछ उस फिल्म से सीखी हो, और आप आ सकते हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341।

फिल्म बैंग बैंग से दोस्तों विशाल ददलानी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ट्रैक विशाल शेखर का कंपोजिशन लिरिस्ट विशाल ददलानी और हमारे साथ एक फ्रेंड आ चुके करते हैं बात उनसे। हेलो हेलो शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। एनीवेज मैं बात कर रहा था फिल्मों के बारे में, तो बता दूं भारत जैसे 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश में बच्चों का एक बहुत बड़ा बाजार मौजूद है जिसे फिल्म उद्योग पहचान नहीं पा रहे। स्टार एक्टर्स के सुरक्षा कवच के बिना फिल्मों को खारिज करना और दर्शकों के केवल एक ही तरह का सिनेमा परोसना इस संकट को बढ़ा रहा है। जैसा कि दीपा भाटिया कहती है, अच्छा सिनेमा आत्मा को तृप्त करता है। बच्चों को अच्छे सिनेमा के महरूम रखना सिर्फ एक व्यावसायिक कमी नहीं बल्कि एक मानसिक स्वास्थ्य संकट की तरह है।

फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से दोस्तों श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक विशाल शेखर का कंपोजिशन इरशाद कामिल के बोल। देखते ही देखते दोस्तों हम पहुंच चुके हमारे कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले ट्रैक की तरफ।

फिल्म हैप्पी एंडिंग से दोस्तों रेखा भारद्वाज, जिगर सरैया और प्रिया एंड्रयूज की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक। संगीत से सजाया था सचिन जिगर ने, बोल से सवारा था प्रिया सरैया ने। दोस्तों अब बढ़ेंगे हमारे शो के लास्ट ट्रैक की तरफ। श्रेया घोषाल की आवाज में सुनेंगे अभी लास्ट एफएम पीके से, और इसी ट्रैक के साथ आपका दोस्त अंकित लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से कुछ दिनों बाद, तब तक लिए बाय, टेक केयर, सुनते रहिए साथ रहिए 107 FM रेनबो।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर। तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर।
1: जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, और अब हम आपके सामने पेशकश कर रहे हैं तीन का तड़का कार्यक्रम का। गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे कोलकाता के शहरवासियों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रिंकू और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का कार्यक्रम। तो चलिए दोस्तों, फटाफट रेडी हो जाइए और तड़के के लिए शुरू हो जाइए, क्योंकि हमारा ये जो शो है ना, ये घड़ी के साथ और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ऐसे कार्यक्रम की होड़ में ऐसा शो है जो मस्ती का पिटारा लेकर आपका स्वागत कर रहा है। चलिए देरी नहीं करते हुए सुनते हैं जुबीन शंकर महादेवन के साथ ये गीत।

जी हाँ, वेलकम बैक दोस्तों। आप मेरे साथ बने हुए थे और आप सुन रहे थे जुबीन शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत फिल्म झूम बराबर झूम से। वैसे तो गीतकार जो थे गुलजार साहब, जिन्होंने इतने अच्छे शब्द दिए थे गीत को, और साथ में संगीतकार यानी कि शंकर एहसान लॉय का ऐसा तिड़का, यानी कि हमारे तड़के की तरह तीन का तिड़का, वो संगीत की वो नज़ाकत शंकर एहसान लॉय में ही पाई जाती है। वैसे एक बात बता दूं दोस्तों कि बाहर जो है ना, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और आसमान का रंग हल्के गुलाबी रंग जैसा भी हो रहा है, लेकिन ऐसे में अगर हाथ में आपकी अदरक वाली चाय का कप हो जाए तो जनाब जीने का और हमारे गाने का मज़ा तीन गुना बढ़ जाएगा। वैसे आज की शाम को और भी हसीन बनाने के लिए मेरे पिटारे में अभी बहुत सारे गीत हैं, तो आइए सुनते हैं पहले जुबीन की आवाज में ये गीत।

0: जी दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आप सबको जुबीन की आवाज में मैंने सुना दिया था ये गीत फिल्म गैंगस्टर से, और गीत के बोल लिखे थे सैयद कादरी ने, संगीत से जिसे सजाया था प्रीतम ने। दोस्तों ये फिल्म गैंगस्टर जो कि बहुत हिट रही थी और उसमें कलाकार भी नए नए थे, इरमा इरान जो हाशमी थे वो भी कुछ नए थे, और साथ में हमारी जो कंगना रनावत थी उनकी भी ये शायद पहली या दूसरी फिल्म थी। वैसे दोस्तों मैं आपके पिटारे में और भी गीतों के भंडार को तीन के तड़के में सजाते हुए पिरोते हुए आपके साथ लेके चली हूँ। जी हाँ, आरजे रिंकू के साथ आप सुनते रहिए 107 एफएम रेनबो पर ये तीन का तड़का शो।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 एफएम रेनबो पर तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM Rainbow Bar, Rainbow Bar।

जी हाँ दोस्तों, न बोल कर भी वो दिल की हर बात कह जाते हैं, न बोल कर भी वो दिल की हर बात कह जाते हैं, ये नैन जब मुस्कुराते हैं तो सारे दर्द बह जाते हैं। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये गीत, और अब अगला गाना कृष्णा की आवाज में। आइए सुनते हैं बदमाश कंपनी से।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक

0: समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
1: जी।
0: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी
0: जी। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है।

0: है ना। हाँ
1: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
2: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो
0: मेरा मरा मुंह देखो।
1: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
1: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: बातें कर रहे हो दोनों?
1: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
1: नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
3: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
2: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अम्मा अम्मा,
1: अरे अरे क्या हुआ?
2: अरे चुब्बा चुब्बा, क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? अम्मा, क्या अम्मा, सपना देखा तूने?
0: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ, है? सोचा बेटे सोचा सोचा, शाबाश राजा बेटा, है ना? चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है।
2: हा?
1: जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, अच्छा। सुबह जल्दी उठना है।

0: अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: लिए भी तो चीजें आएंगी, अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।

0: बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
1: फिर भी
2: अम्मा तू भी चले वापस?
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
2: अम्मा क्या सोच रही है?
1: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
0: ये जामुन?
1: हाँ
0: चलो इसी को काट देते।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
0: हाँ।
2: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
1: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
0: अरे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
1: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
2: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
0: ये
1: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
0: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
1: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
0: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
1: क्यों,
0: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
2: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
1: हाँ हाँ
0: चलो
1: चलो, चलो आगे चलकर देखते हैं।
3: ये देखो, ये पेड़
1: देख लो।
2: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़ और वही बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
1: चलो, इधर से निकल कर आओ।
2: अच्छा
1: आई, क्या हुआ चुप्पा,
0: क्या हुआ?
2: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
1: अरे दिखा दो
2: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
0: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
2: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना।
0: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
1: हाँ।
0: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा,
1: और नुकसान भी क्या है।
0: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
1: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल।
0: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
1: क्यों?
2: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
0: हाँ।
2: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
0: हाँ बिल्कुल,
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
0: अच्छा।
1: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
0: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
0: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
1: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया,
0: और क्या।
1: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
0: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: जीवा जीवा जी, अब तो

0: कटेगा नहीं कटेगा।
1: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
3: हाँ रे चुप्पा, हाँ पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे है?
2: तू समझ गई है?
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
3: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
3: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
3: चल। बता।
2: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे, हाँ पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
0: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
2: बोल ना।
3: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकार

0: उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग, और अब बात करते हैं परियोजना प्रस्तुति की। एक ऐसी योजना जिसने देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, यह है प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों, एक दौर था जब गरीब इंसान बैंक की चौखट पर जाने से भी डरता था, लेकिन इस योजना ने हर भारतीय के हाथ में बैंक का खाता और जेब में रुपये एटीएम कार्ड भी ला दिया। मजे की बात यह है कि इसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई टेंशन नहीं है, यानी जीरो बैलेंस पर भी आपका खाता फर्स्ट क्लास चलता रहता है। साथ ही 2 लाख दुर्घटना बीमा और जरूरत पड़ने पर 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। तो ये सुन रहे थे आप परियोजना प्रस्तुति। इसी के साथ रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं छायालो 107 FM रेनबो पर रिंकू के साथ। दोस्तों वक्त जो है ना पंख लगाकर फिर से वापस आ गया है दोस्तों, और मैं आपके सामने फिर से वही सुरों की महफिल, उन सुरों की महफिल को, लड़ियों को आपके सामने बिखेरने के लिए फिर से मौजूद हूँ। तो आइए सुनते हैं सुरों की महफिल।
0: सुरों की महफिल।
1: दोस्तों कहते हैं कि शब्द जहां थक जाते हैं, संगीत वहां से अपनी बात को शुरू करता है, और जब बात शुरू की है तो बिना शायरी के महफिल अधूरी सी ही लगती है। तो आज की इस महफिल का आगाज करते हैं इस खूबसूरत शेर के साथ। दोस्तों सुरों की महफिल है और यादों का साया है, आज फिर संगीत ने हमें पास में बुलाया है। भीगी आंखों हो या फिर होठों पर मुस्कान, इस महफिल ने हर जज्बात को सिरों में पिराया है।

0: आए।
1: जी हाँ दोस्तों, सुरों की महफिल में हम आपके लिए उन सभी सुरों को लाए हैं, उन सभी गीतों को लाए हैं जिसके साथ आप अपने यादों को, यादों के पन्ने को फिर से उलटने लगेंगे। दोस्तों, यादों के पन्ने पलटेंगे, कल फिर इसी मोड़ पर और सुरों की महफिल सजेगी दिल के हर एक छोर पर। वक्त का पहिया है ना, वो थमता नहीं है लेकिन चलता रहता है, और हमारे इस फिल्मी दुनिया में सुरों के एक से एक सुर की महफिल सजी हुई है। वो हमारे जब 60 के दौर था तब भी इतने सारे गीतकारों ने अपना योगदान दिया, फिर आए 70, 80 और 90s के दौर के बाद आज भी सुरों की महफिलों का कार्यक्रम थमा नहीं है बल्कि ये कड़ी दर कड़ी जुड़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही महफिलों को हम सजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सुना रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक के साथ साथ हम आपको सभी उन गीतों को भी सुनाएंगे और उन गीतकारों को भी सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सुन लेते हैं।

0: समा रोशन है महफिल में, सारंगी की तान बसती है। समा रोशन है महफिल में, सारंगी की तान बसती है। और 90 सदी की उस दौर में संगीत की जान बसती है। भीगी आंखों से जो सुनते थे कद्रदान सुरों को कभी, आज इस रेडियो की महफिल में वही शाही शान बसती है। आइए सुनते हैं उदित सुखविंदर, आशा भोसले और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब दिल खिले तब गुल खिले।

जी हाँ दोस्तों, आप उदित नारायण को सुन रहे थे सुखविंदर संग, और साथ में थी आशा भोसले और सुनिधि चौहान। दोस्तों उदित नारायण, अगर हम सुरो की महफिल में बात कर रहे हैं उदित नारायण की और बात हो रही है रेनबो 107 एफएम में, तो 90 के दशक उदित नारायण कुमार सानू के साथ ही बात होती है। वैसे वे तो उसी दशक के हैं जो इश्क में सिर्फ उदासी या भीगी आंखों के साथ नहीं बल्कि खुशियों के साथ उन्होंने अपनी आवाज रखी थी, और अपने दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाली उनकी मखमली मुस्कान भी थी जो कि एक चुलबुलापन और शरारत, प्यार भरी शरारत से भरा हुआ था। वैसे सुरों के सरताज अगर उदित नारायण जी को कहा जाए तो अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं है। उदित जी की आवाज में वो जादू था और है कि जब वो गाते हैं तो रोता हुआ दिल भी मुस्कुरा उठता है, और भीगी आंखों में प्यार के सुनहरे सपने तैरने से लगते हैं। और इन्हीं यादों और उदित जी की इस जादुई मखमली आवाज के नाम पर एक शेर अर्ज है कि उनकी आवाज में घुली है कुछ ऐसी मिश्रे सी, उनकी आवाज में घुली है कुछ ऐसी मिश्रे सी, सुनकर जिससे हर धड़कन मचलने लगती है। भीगी आंखों में भी आ जाती है एक चमक गालिब जब उदित जी की सुरीली तान फिजाओं में बहने लगती है। बात उदित जी की हो रही है तो साथ में अलका याग्निक जी की भी बात होनी चाहिए। आइए सुनते हैं उन दोनों का एक ड्यूट।

जी हाँ दोस्तों, उदित नारायण और अलका याग्निक को सुन रहे थे आप। फिल्म राजकुमार से गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। दोस्तों वो दौर था जब लक्ष्मी जी और प्यारे लाल जी ने अपनी सुरों की महफिल में ऐसी जाल बिछाई थी कि आदमी खुद ब खुद उसमें फंसता हुआ चला आ रहा था। यहाँ फिल्म दोस्ती के नाम से शुरू ही उनकी ये दास्तान और चल रही है, और अभी कुछ और दिन रहते तो शायद और भी चलते। वैसे हम आपको उन सभी गीतकारों के साथ उन सब गायकों को भी जोड़ रहे हैं जो कि हमारे सुरों की महफिलों की जान है। और जान के साथ याद आया कि ऐसे भी एक जान थे उदित नारायण के बाद, कुमार सानू दाजी। जी हाँ, 90 के दशक की वो इश्क की लगी हो या फिर बैकग्राउंड में कुमार सानू दाजी की आवाज ना गूंजे तो ये मुमकिन ही नहीं। सानुदा की आवाज का वो जादू जो सीधे टूटे हुए दिलों पर मरहम लगाता था और भीगी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगा देता था। और इन्हीं यादों और सानुदा के रूपहली और सफर के साथ हम ये गीत आपके नाम करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, जब भी बजता है सानूदा का कोई नगमा, पुराना याद आता है वो चाहत का हसीन जमाना। अब सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म दस्तक से। वैसे दोस्तों, भीगी आंखों से मुस्कुरा देते थे वो आशिक आज भी, जिन्होंने सीखा था उनकी आवाज में अपने दिल को लगाना। याद है आपको आशिकी का वो गीत और 90 का दशक और सारे जवान धड़कने। तो चलिए कुमार सानू को याद करते हुए सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, ऐसा वो दौर जिस दौर में कुमार शानू ने अपनी सादगी के साथ लोगों की दिलों की धड़कन में उतरने का जो जिम्मा उठाया वो तो काबिले तारीफ है, क्योंकि लोग उन्हें बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन साथ ही में उनका साथ देने के लिए उस दौर में थे अभिजीत भट्टाचार्य जी। जी हाँ, सुरीले समंदर में जहाँ सानुदा और उदित जी की लहरें थी, वहीं उस दौर का एक ऐसा नायाब मोती भी था जिसे हमारा दिल आज तक भुला नहीं पाया है।

जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभिजीत भट्टाचार्य जी की। अभिजीत जी की आवाज का मिजाज इतना रोमांटिक और मखमली था कि शाहरुख खान की डिंपल वाली मुस्कान पर उनकी आवाज ऐसे सस्ती थी जैसे हर आशिक का बस दिल झूम उठता है। आइए सुनते हैं।

कहते हैं कि वो सादगी का दौर, वो महफिल अभिजीत के गानों की, अजीब की कशिश थी धुन पर मचलते दीवानों की। आइए सुनते हैं एक बार और अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति जी को।

जी हाँ दोस्तों, अभिजीत जी की आवाज का मिजाज इतना रोमांटिक और मखमली था कि ऐसा लगता था मानो हवाओं ने प्यार का इत्र को यूं ही खोल दिया है। और शाहरुख खान जी की आवाज उनके साथ बहुत मैच खाती।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: सुरों की महफिल,

0: जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से 107 FM रेनबो पर। राजे रिंकू के साथ आप सुन रहे हैं सुरों की महफिल।
1: सुरों की महफिल।
0: दोस्तों, चूंकि ये शोशरों की महफिल है और हम यहाँ पर 90 के दशक के बाद के सारे गाने को बजा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन गीतकारों और गायकों को कैसे भूल जाएं जिन्होंने हमें ये सुरों की महफिल का वरदान दिया और अपनी गीतों के साथ, अपने संगीतों के साथ ही ऐसे अमृतवाणी के साथ हमें अपने कानों कन प्रिय जो कहते हैं उसे इस बैकग्राउंड में बनाया और हम अपने साथ उन सपनों को, उन सुरों के साथ सपनों को लिए हुए चलते रहे, संजोते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो चलिए हम भी क्यों पीछे हटे, आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ सुरों के गाने और सुनाते हैं अपने मन की उस छोर को जहां हम छोड़ के आए थे। मनहर उदास, अलका याग्निक की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म जान से ये गीत, और साथ में थे अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना की ये शायद दूसरी फिल्म थी और इसमें बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी। वैसे उस दिनों में छोटी थी और ऐसे पिक्चर कोई मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। ट्विंकल खन्ना बहुत सुंदर दिखती थी तो मुझे ये फिल्म में बहुत ज़्यादा ही गहरी रुचि थी। ये मेरे फेवरेट गानों में से एक है। आइए सुनाते हैं आपको अब कुछ और दौर के बारे में कि एक 90 के दशक में अभिजीत, अलका याग्निक, कुमार सानू के साथ साथ एक और भी आवाज था जो हम शायद भुला नहीं पाएंगे। जी हाँ, वो था नायक नहीं खलनायक हूं मैं। जैसे दमदार और कड़क गाना गाने वाले तो दूसरी तरफ छुपाना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता, जैसा बेहद दर्दनाक और भीगी आंखों वाला रोमांटिक गाना भी गाना वाले विनोद राठौर जी की आवाज। जी हाँ, विनोद राठौर जी की आवाज में एक अनूठी मर्दानगी, गजब की एनर्जी और जोश था। वे एक ऐसे ही अकेले सिंगर थे जो कड़क गाना और रोमांटिक दर्द भरा गाना दोनों ही गा सकते थे। वो शाहरुख खान, संजय दत्त और गोविंदा की स्क्रीन प्रेजेंस पर बिल्कुल फिट बैठते थे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सुरों की महफिल में, तो विनोद राठौर जी का गाना तो बनता ही है। आइए सुनते हैं ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, वो सादगी का दौर और वो महफिल, उन गानों की, हरे हरन, अलका याग्निक और जसपिंदर नरूला। ये फिल्म उस समय आई थी जब शायद श्रीदेवी जी की अपनी वो छवि थोड़ी सी झलने लगी थी, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने फिर से ब्रेक मारा और फिर से छा गई, और इनके गीतों ने उस फिल्म में जो जान डाली थी वो आज भी सभी को याद है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुरों की महफिल। जी हाँ, ऐसे सुर जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके और मेरे बारे में। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 8:40 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं सुरों की महफिल आज 107 FM रेनबो पर रिंकू के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे श्वेता सेट्टी और हंस राज हंस को। फिल्म बिच्छू से ये गीत चल रहा था और स्टूडियो की घड़ी में हम बता दें कि 8:46 हो चुके हैं, जाने का समय बिल्कुल ही नजदीक आ चुका है, लेकिन छोड़े जाऊंगी आपको गीतों के साथ।

जी हाँ दोस्तों, संगीत को ना कोई दीवार रोकता है और ना संगीत किसी दीवार से परे रहा है। ये सरहद के पार जाता है और संगीत ही है जो हर द्वार को खटखटाता है। दोस्तों ये वक्त है ना बहुत जालिम है, जब महफिल हम सुरों की महफिल का संगीत बजा रहे हैं तो घड़ियां जो हैं सुइयों की कुछ ज़्यादा ही तेज भाग रही है। इस वक्त 8:52 हो गई है। तो दोस्तों इसी के साथ सुरों की ये महफिल कल नए फिर नए रंग के साथ हम फिर अगले अंक में हाजिर होंगे। सुरों की महफिल फिर से सजाएंगे ये वादा है, लेकिन इसके साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म कहो ना प्यार है से। ये गीत आप सुनते रहिए और रिंकू को इजाज़त दीजिए सुरों की महफिल से। नमस्कार।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर, पुराने दिनों

0: তুমি শুনছো বাংলা ও হিন্দি গানের কাউন্টডাউন শো রেইনবো টপ 20 only on 107 FM rainbow rainbow top 20 rainbow top 20
1: rainbow top 20 তে এবার সং নাম্বার 2 मैं वापस आऊंगा साउंड ट्रैक थे के तेरे पास मैं जे गानटार फिमेल भार्शन यथारीति भीषण हिट ए मेल भार्शन जस्ट ड्रप हो एकदम बम ब्लास्टर मत बेपार घटे
2: सॉन्ग नम्बर टू एर पर अपरूपा जो करते हैं एक पुरो रिकैप करते हैं एक कैप्सूल करते हैं ठीक है जे हमारे ये कूड़ी थे दर जार्नी टा कि और तरपर आबार दूजने फिर ही आसब
1: एकदम ही तई सरसरि चले जा आज के सॉन्ग नम्बर टू तेरे पास मैं
0: टॉप 20 सॉन्ग नंबर टू

0: What a beauty! आपका क्या ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
0: Point noted, Mr.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।